0: उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया लागा गोरी गुजरिया से

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने से।

तक धुमी तक ताली तक जमी तक धला अंबो तक जगे तक ताली के नतु तक नक तक जमी तक नक नक जमी तक नक नक जमी तक नक नक जम ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ताली ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के जम

0: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bhakt jano, hum aaj aapko kamar ki mehta sunate hain. Ek baar Bhagwan Parshuram apne pitaji ke kehne par apni mata रेणुका जी का शीश काट देते हैं। इस पाप से बचने के लिए वो उपाय खोजते हैं। नारद जी के कहने पर परशुराम जी भगवान शिव की उपासना करके हरिद्वार से पावन गंगा का जल कांवर द्वारा लाकर शिव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उसी चरणामृत को लेकर अपनी माता के मृत शरीर पर डाल देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रेणुका जी को जीवन दान मिल जाता है। ऐसे हैं करुणाधारी भोलेनाथ। तो आइए आनंद लीजिए इस भजन का।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

किस्सा अभी है कल का, रूठी थी घर की मलका, सुरमा इधर से झलका, गुस्सा उधर सा हल्का।

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीदरलैंड, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। वीरेन यूली बस्तात 40 यार।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। होफदौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 70 साल के आयु में जीवन तख्यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शालिनी सरेशा और सूरज के पिता अवर्त वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा होफदौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु होफदौरब में निवास स्थान पर हो गई है। होफदौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 70 साल के आयु में जीवन तख यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना होफदौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु होफदौरब में निवास स्थान पर हो गई है। स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा जो था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक फमेदाखफान हालफ ट्वी तो हालफ द्री उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार मई के 5 तारीख दिन में 5 बजे किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इत्फार्त फ्रजोर्खिंग परिवार ओरी और परिवार कुंदन के दुख में शामिल है।

और यहीं से सुनने वालों शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। और भजन जो आप सुनेंगे तो ये पेश है हौफ दौरप के रहने वाले श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गीय पति दर्कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हावर्ड वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के तरफ से स्वर्गीय नाना स्वर्गीय श्रीमान सुंदर ओरी के याद में 70 साल की आयु में बीते बुध इनकर मृत्यु हौफ दौरप में निवास स्थान पर जो हो गई है, तो इन्हीं के याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

और गीत अभी आप प्रोग्राम में जो सुने तो ये पेश की गई है होफ दौरब से श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गीय पति और लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हावर्त वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली की तरफ से स्वर्गीय प्यारा नाना स्वर्गीय श्री सुंदर ओरी की याद में बीते बुध 70 साल की आयु में इनकर मृत्यु निवास स्थान पर होफ दौरप में हो गई है। तो इन्हीं की याद में और इनकर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये भजन प्रोग्राम में पेश की गई है। और यहीं तक आप उजाला रेडियो पर सुने सोख प्रोग्राम यादें।

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

आपके घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज इतवार 3 मई का प्रोग्राम, सोमवार 3 मई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी और उसके जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। यहां से लेकर ठीक 5 बजे तक आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए हो सकता है और व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203639008 पर, 9203639008 पर। वेल, इतवार का शाम का प्रोग्राम और बाहर के मौसम बता दे कि धीरे धीरे पानी बरसे हैं, उतना मोई वेरवाना बात रेखन अख्तवेर। ओके, चलिए प्रोग्राम में पहला बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे श्रीमान सत्यानंद रेखा जी।

0: अल्लाह शाबाश शाबाश जय स्वामी दयानंद। आज तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने श्रीमान सत्यानंद रेखा जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: और अलमेरा में देखा जाए श्रीमान प्रकाश चंद्रिका सिंह जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। तो चलिए भाई ये गाना तुम्हारे नाम।

अल्ले शाबाश शाबाश बोले जिंदगी है क्या बोले उड़ती हुई हवा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो वो देखा जाए औदखर का नामसल में, जहां पर इस वक्त भाई धीरज सीताराम और नरेश और चांद इस सब वहाँ पर पकावे अपन नयन हो स्वामी। तो चलिए ये गाना आप तीनों के लिए

शाबाश शाबाश बोले गैली निकेरी के बाजार और कहा गिरगल झुमका आयुषर से श्रीमान सत्यनंद रेखा जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वैसे का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके देखा जाए इस हफ्ते में, हाँ वेल इस हफ्ते में अशोक प्रोग्राम को वहां बैठ करके सुने बोले सुभाष बोले यहाँ पे बात त्वेयन दर्द खराद वेल त्वेयन दर्द खराद। चलिए भाई अशोक तो ये गाना तुम्हारे लिए।

वाले चिट्ठिया के बोले निंदिया में बोले आउट हुई है ना, बोले तनी बगल में सो जाना। और इस तरह से जयंत महावीर के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अम सुरम में देखा जाए बैनी राम सरन भी प्रोग्राम को बरकर सुने तो

शाबाश शाबाश, गुजरा हुआ जमाना बोले आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। और इस तरह से जैन महावीर के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखिए रोटरडम में राकेश और नताशा प्रोग्राम को बरकर सुने, बोले आसपांग। तो चलिए गाना आप दोनों के नाम।

घोड़ी धीरे चलो और बोले छल की ना जाए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और भी खान शिर के द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय सनातन जी के आवाज में, और ये गाना हम पेश करेंगे देखा जाए दलहा शहर में, जहां पर इस वक्त श्रीमान और श्रीमती द्वारका जेठू जी प्रोग्राम को बरकर सुने। एकदम सूर्य नाम से आए हुए हमारे मौसी मौसा, तो चलिए गाना आप दोनों के नाम

शाबाश इस तरह से स्वर्गीय सनातन जी के आवास में ये खूबसूरत सा गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे इतवार का शाम का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा करीबन 20 मिनट बाकी रहा 4 बजे में ट्विन तखमीतुन फुरफीर और हम तो लोग से बोल चुके सुंदर रेखन अख्तख वेर बा पानी का मौसम है यार का करिए यार यहाँ पे ऐसने हो गए हैं मैं कोई बात ना है हम तो के साथ बाटी ना चलन दे अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो लाइस फेन शहर में जहाँ पर इस वक्त सानू जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने प्यार के साथ तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश शाबाश बलम हम तेरे हो गए लो हो गए प्यार की जीत। और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। आई बॉय चलन दे

वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से द्रौपदी जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 10 मिनट बाकी रहा 4 बजने में, और देखा जाए और मेरे में जहां पर इस वक्त भाई मनोज मुंगार जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।

शाबाश शाबाश बोले कैसे द्रौपदी के चीर बढ़ाई। आयुष से स्वर्गीय राजीव शिव गुलाम जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वेल इन मौसम में कितना मिला अपन घरे चाय या तो कॉफी बैठ कर पीते हैं, और दनहाख में वातर रेंगा में वहां पर श्रीमान राजन के घरे बनल बा। हम तो से बता दे वहां बनल है रासफोरू कहाँ के फ्रांकराइक के रासफोरू बनाए से खूब तीता तीता मसाला में दाल भरी रोटी और एगो डोक्सी के गोश्त खूब लुटपुटार। वेल खसलख तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके दनहाख में तंत आनी जी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो तंत आनी ये गाना आपके नाम। और भैया राजन जी ऐसी सुमाकलक चलन दे यार।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, आज इतवार 3 तारीख मई का प्रोग्राम सौंदरी मई। और आप लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो प्रोग्राम का नाम है वैसे इंग्लिश का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, जो हर इतवार की शाम में 3 से लेकर 5 बजे तक सौंदरी। तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और ये दूसरा भाग और आखिरी भाग का प्रोग्राम का बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे तो एकदम बरेला शहर में, जहाँ पर श्रीमान और श्रीमती बिहारी जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।

क्या भरोसा आंचे कल बुझ गया। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। अवसर से स्वर्गीय रामदेव चैतुकी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। अब की बार गाना को मांग के हम राम का रहने वाला सुंदर कैनत अपना भाई सत्तार के लिए गाना मांग किया है और गाना जो आप लोग सुनेंगे स्वर्गीय सनातन जी की आवाज में।

नजरिया लड़ गए रे अवसरों से स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और अब की बार देखा जाए सुतमेर शहर में जहां पर इस वक्त मून एंड सांता प्रोग्राम को बड़ी करके सुने, तो ये गाना आप दोनों के नाम रमेश चंद्र बिहारी जी

0: वाली शबान शबान शाह। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी खास करके देखा जाए तो रमेश चंद्र बिहारी जी के आवाज में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो दीमन शहर में जहाँ पर फौसिया प्रोग्राम को बर करके सुने
1: खाए पिया
0: आई बोई सपनवा में।

शाबाश शाबाश, रात के सपना, रात रात रात रात के सपनवा दिखाए पिया हमको। आयुष तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के आवास में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। देखा जाए श्री राम पारमारी बोम इस वक्त स्टेफी पराख भी प्रोग्राम को बारीक सुने और गाना मांग करी से अपना लवली के लिए प्यार प्यार प्यार के साथ सभीता के लिए गाना पेश है। प्यार और मोहब्बत के

बलियार मैं भाऊरा एंड तू है पुल अवसरों से देवेंद्र सिंह एंड सविता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। अब ये गाना पेश है दनहाग शहर में जहां पर इंदिरा एंड स्वाखर जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना आप दोनों के नाम

शाबाश शाबाश। और इस तरह से खास कर गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार तो आलमेरे में जहां पर इस वक्त माला मुंगार जी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, तो चलिए गाना आपके नाम कर देता हूँ। गाने वाले होंगे मोती माला।

चबा चाई घट्टा मन घोर ऐसा से मोती माला भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना को मांग करने वाली देखा जाए फैंस फोल्डर में, जहां पर इस वक्त मेला कट्टू सिंह जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने और इस गाना को मांग कर रहे हैं मेरा सुंदर सपना यार।

बलियार मेरा सुंदर सपना बीत गई। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ऐसा ही गीत प्रोग्राम में हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। बस प्रोग्राम को आप लोग

और दनहा अक्षर में देखा जाए हैशला यांग की प्रोग्राम को बारे सुन रहे जो गाना आपने मांग के हो गाना इस वक्त मुझे नहीं मिला तो इसलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

टाइटू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और हमारे प्यारे सुने लोग करीबन चार मिनट बाकी रहा पांच बजे में। तो चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी बैठक गाना जो हम पेश करेंगे, तो ये बैठक गाना हम पेश करेंगे देखा जाए बरेडा शहर में, जहां पर इस वक्त गायत्री भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो गायत्री ये गाना तुम्हारे लिए है एंड गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैठक।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, आशा है कि आज का बैठक गाना प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हम हमेशा बोलबे जोन ची करना है आज कल ना कल के बाद ना कल, कल तू ना देख लेना, हम जो भी करना है प्यार से कर लेना। अगर आपसे किसी से प्यार है तो बोल देना यार हमें तुमसे प्यार है। आप लोग अपना एतवार का शाम और रात्रि मोई से बिताइए, मोई से रहिए, अपने आप को जरूर से ख्याल कीजिए। यहां तक आपको सुनने प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा पेश किया आपके लिए सुभाष शिव गोविंद, तो लोग मोई से रहिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम नमस्ते।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। होफदौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 70 साल के आयु में जीवन तख्यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शालिनी सरेशा और सूरज के पिता अवर्त वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा होफदौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु होफदौरब में निवास स्थान पर हो गई है। होफदौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 70 साल के आयु में जीवंतख यार और श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ड वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना होफदौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु होफदौरब में निवास स्थान पर हो गई है। स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा जो था। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार मई के 5 तारीख दिन में 5 बजे किए जाएंगे। वेस्ट हार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फॉरजोर्खिंग परिवार ओरी और परिवार कुंदन के दुख में शामिल है।

और यही से सुनने वालों शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। और भजन जो आप सुनेंगे तो ये पेश है हौफ दौरप के रहने वाले श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गपति दरकन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हावर्ड वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के तरफ से स्वर्गीय नाना स्वर्गीय श्रीमान सुंदर ओरी के याद में 70 साल की आयु में बीते बुध इनकर मृत्यु हौफ दौरप में निवास स्थान पर जो हो गई है। तो इन्हीं के याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

और गीत अभी आप प्रोग्राम में जो सुने तो ये पेश की गई है होफ दौरब से श्रीमती मिली ओरी कुंदन की तरफ से स्वर्गीय पति और लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज की तरफ से स्वर्गीय पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश की तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली की तरफ से स्वर्गीय प्यारा नाना स्वर्गीय श्री सुंदर ओरी की याद में बीते बुध 70 साल की आयु में इनकर मृत्यु निवास स्थान पर होफ दौरप में हो गई है। तो इन्हीं की याद में और इनकर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये भजन प्रोग्राम में पेश की गई है। और यहीं तक आप उजाला रेडियो पर सुने शोक प्रोग्राम यादें।

चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका खादिम शहीद गुलजार और ये है आप ही का यू आर उजाला रेडियो। कुछ मिले जुले संगीत के साथ हम स्टूडियो में हाजिर है, आप आज मुलाहिजा फरमाइए कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग से। सबसे पहला सिलेक्शन जानेमन, हाय हाय तुम कमाल करते हो, इट्स यू आर उजाला रेडियो।

0: जानता हूँ तुम चुपके चुपके रेडियो सुनते हो, जाने मन तुम कमाल करते हो। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में आप सलेक्शन अभी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। और ऐसे में प्रोग्राम में हो जाए मिताली की आवाज में के बेवफा बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने की काबिल नहीं है।
1: और अब सुनिए वो नगमा जो मुझे आपकी फरमाइश पर हर महफिल

हम आपको प्रोग्राम में अब जगजीत सिंह की आवाज में एक गजल सुनाने वाले हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

हाँ जी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम आपको जब जब देखते हैं तो जहन में बड़ी बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ आप अभी प्रोग्राम में सुने हैं। युवाण उजाला रेडियो का पैगाम है और मिले जुले संगीत में अब हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म मेरे जीवन साथी का सिलेक्शन। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज़ दीवाना करके छोड़ेंगे। अब क्या छोड़ेंगे, आइए मिलकर सुनते हैं सिलेक्शन में।

सौ बार कहा ऐ जाने वफा तू हमको यूं प्यार से देखा ना करो, तो अब क्या हुआ कि दो दिल मिल रहे हैं, वो भी छुपके छुपके।

हमने आपसे कहा ना कि चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप हमें डाल कर सकते हैं एमस्टरडम में 02-40-09-08-07 पर। सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप जरूर डायल करें ना रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में आइए अब सुनते हैं फिल्म का नाम बॉम्बे 405 माइल्स, 1980 का फिल्म। अरे हो गए हम आपके कसम से कसम से कसम से।

सुरों का बादशाह, संगीत का फरिश्ता, पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज, साथ में द मैरिड क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी। फिल्म का नाम बॉम्बे 405 miles। अरे हो गए हम आपकी कसम से। इट्स यू आर उजाला रेडियो और ऐसे में हो जाए सिलेक्शन प्रोग्राम में फिल्म का नाम तेरे नाल लव हो गया। आइए मिलकर सुनते हैं आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को।

पिया रे ओरे पिया। उजाला रेडियो के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार, और अब आपको सुनाने वाले हैं 1991 का फिल्म लॉफ से साथिया ये तूने क्या किया।

0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एमस्टरडम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl. Just enjoy the vibrations of UR Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toh?
1: The most sensational and
2: the best.

बातों से। बहुत ही रोमानी सिलेक्शन आपने अभी है सुने है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात है, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार और आप सुन रहे हैं यूआर को उजाला रेडियो को। जैसे कहा है हर एक काम काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक और फ़ोन का नंबर है 02040908 07 पर 02040909 07 पर। यूआर उजाला रेडियो को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिनर्स है, आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में।

उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और इतवार के रात्रि का प्रोग्राम में अब यहीं से गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजले के साथ गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम, जिसमें बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुन सके और इससे लुफ्त उठा सके। तो चलिए हम कुछ गीतों और गजलें सेलेक्ट कर चुके हैं आज के लिए, और आप सुनेंगे सबसे पहले पंकज उदास जी को।

जब दिल बहल ना पाए तो थोड़ी सी शराब पीजिए। ये मैं नहीं कहता, पंकज उदास जी से आप गजल को सुनिए।

अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। तो चंदन दास की आवाज़ में आप इस सुंदर गज़ल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया में अब मेहंदी हसन हिस्सा लेंगे।

है कि कहीं तुझे खो न जाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। मेहदी हसन की आवाज में इस सुंदर गजल को आप सुने।

तेरा आज भी इंतजार है। आशा जी के साथ आप सुने भूपेंद्र की आवाज में उजाला रेडियो प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। और आप जो सुन रहे हैं हमारी खुश नसीबी है।

कजरा रही आंखें, कितनी भोली कितनी सुंदर कितनी प्यारी प्यारी आंखें। पंकज उदास जी की आवाज में आप इस गजल को सुने उजाला रेडियो पर।

तेरी तस्वीर भी ले जा मुझसे, चंदन दास की आवाज, उजाला रेडियो, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी तुम्हें चाहूंगा। आप इस गजल को सुने मेहदी हसन की आवाज में। मेहदी हसन ये वो फनकार है जिसकी आवाज जब कानों तक पहुंचती है तो जिस्म की हर एक रूह जो है तो जाग जाता है। मेहदी हसन। अब और अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में जगजीत एंड चित्रा सिंह।

आप इस गजल को सुने चित्रा सिंह की आवाज में। और सुनने वालों, अब एक गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया भी समाप्त करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आए हुए होंगे। तो चलिए मुकेश जी से इस गीत को सुनिए।

उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। हर एक इतवार की रात को बनाया जा रहा है आपकी खातिर। और इस प्रोग्राम में जैसे आपको पता ही है तो हम गीतों और गजलें आपको सुनाते हैं और बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से इस प्रोग्राम को आप सुन करके और इस प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। और हाँ, जरूर अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल पता है, ईमेल एड्रेस है info@ujala.nl। तो चलिए पहली गजल आशा जी की आवाज में पेश है।

दलत महमूद की आवाज, गीत और गजल की दुनिया में आप अब सुनेंगे गुलाम अली को कविता कृष्णमूर्ति के साथ।

वो नहीं मेरा, वो नहीं मेरा, मगर उससे मोहब्बत है तो है। गुलाम अली और कविता कृष्णमूर्ति से आप

सो रहो अशोक खोसला की आवाज में गजल को आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

आपके साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और अगर हजारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो ये हमारी खुशनसीबी है।

का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आप सुने, उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आइए गीत और गज़ल की दुनिया।

0: रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोले। और अब घड़ी की तरफ नज़र रखते हुए ये कह सकता हूँ कि प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे और मायूस मत होना।
1: मुझे प्यार
0: अभी प्रोग्राम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे।